0: Shout out Turtle Gang.
1: शाम का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ, टॉम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
2: इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो?
1: जी हाँ। सोनिया, तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है। मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है।